Okeyci, assalamu alaikum and assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuhu. Umeed ramale chitul baratru jul khushale. Aaj jwan ba mazur pa khandun ki be. Aaj tu namak chitul da sahar pa khe. Good morning. Yani subah pa hai. बिल्कुल जी, आप लोगों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जहां जहां भी हमारी आवाज आ रही है और आप अपने कानों से सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा शुक्रिया। और मैं कब तक कहूंगा कि आप लोग आया करें, अपनी खामोशी को खत्म करें। तो आज मैंने नहीं कहना है, मैंने आज को आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहना है कि आप लोग आए। नहीं यार, आप लोग आए ना। ओके जी, हर के लिए खुश आमदी टूल तो आई माँ, पखेर आली स्त्री मुशीदर तो आई माँ, अल्लाह दी उखी अल्लाह दी उखी अल्लाह दी उखी ची बिल्कुल दगश्मों पखेर खैरियत से रहती रिशु हुई, अमन अमान से कुंज से रा बिल्कुल जी ती रिशु हुई। आज कर दमिने या माँ खबर दमिने, बिसर का सुख बीमारान भी या सुख द मुश्किलात उसे रमक भी, अल्लाह दी बिल्कुल आगे बीमारान ता चिकम दे शिफाई कामिल अवर की, आओ द चाचे हिस्से किस्म मुश्किलात भी से किस्म मुश्किलात भी, अल्लाह दी बिल्कुल जिदा हुई मुश्किलात चिकम दे हल की।

ओके जी, बस ज्यादा म्यूजिक नहीं, म्यूजिक कम सुनेंगे। एक पुश्त में हमारी कमाते ना अखीम, म्यूजिक कम और चावल ज्यादा, ठीक है ना। तो बातें ज्यादा करेंगे, म्यूजिक को कम प्ले करेंगे। तो बिल्कुल जी, जाग जाए आप लोग, जाग जाए यार, अपनी नींद को खत्म कर दें। बस ना यार, अब तो 9 बजे है और 9 बजे लोग जागते हैं, और बिल्कुल जी जागते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को नींद आ रहे हैं तो इस तरह कर लेना कि गरम गरम चाय। हाय ना यार, आसामी आपने क्या कर दिया यार, क्यों चाय का नाम ले लिया आपने। चलो बस अब तो ले लिया है, लेकिन आप लोग इस तरह कर लेना कि गरम गरम चाय से एक कप चाय जल्दी जल्दी में नहीं, चलो आराम आराम से पिए और आपकी नींद बिल्कुल जी खत्म हो जाएगी। और फिर प्रोग्राम सुने, डायल करते 0335 435 3515 और 81 सी प्यारी सी मैसेज को टाइप करके भेजे। किसको भेजे जी, हमें हसाम लोधी को भेजे, इसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान को भेजे, ठीक है ना। आई लगे टांग वाला वानी वाला चरंगे सोए बुरबुरिये मुझ खदई तासुसरंगे शपमुशति रश्वला मौसम से रंगी राई शदाई कनो एक गर्मी दा अलक अब्दुल खादी से बो आई सलीम कटी हिल से तेरे ख्याल ले दे उड़ता चिड़ा टमाटर ऐसे भी से ग्रान खड़ल बिल्कुल जी। सवाबी वालो आओ कना ये दिरुजियानो का आवाज दर्जी का ना अलनगुरी रावी शेखा सवाबी वालो दा सिकारु के गना चिनन खुलक शान रावी लन शान लक्षण रा पासे आके सवाबे द कटो पे दे है के गदुंदे के चदुंदे तूर बेला द काटक थे बरसले न उखार दे करि सालपुर दे करे शकीदा खमरदान दे ओके जी। निजामपुर वाला मानसेरा वाला ओए हरिपुर वाले जाग जाए ना यार, जियान वाले आप लोग किधर गए, आप लोग भी जाग जाए ना यार, जागने में कोई हरज थोड़ी है जी। आज मैंने आप लोगों को जबरदस्ती लेके आने प्रोग्राम में, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि आप लोगों के साथ मैं झगड़ा नहीं करूँगा, मैंने आज भी नहीं करना है। मैं किस तरह करूँगा यार, मैं अकेला और आप बोध, तो किस तरह मैं झगड़ा करूँगा आप बताए। और मैं एक अमन पसंद बंदा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैंने फिर भी आज आप लोगों के साथ झगड़ा करना है। मैंने अपने आप को जो है ना, आप मुझे मान लोगे ना, तुम्हारे मैंने तो फिर भी झगड़ा करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग आते ही नहीं। मैं बार बार बुला रहा हूँ कि आप लोग आ जाए ना यार हमारी इस कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम में। मैं कोई आपको जबरदस्ती लेके तूड़ी आ रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ ना कि मानसेरा वाले एपड़ाबाद वाले हजारावाल हरिपुर वाले कब तक इस तरह खामोश रहोगे। दसो बुरी बता सुधुमरा खामोश है दाखपल खामोशी ने मात की राशि जमुग दे इसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम था। आप लोगों को पते हमारी इसना कॉस्मेटिक पाकिस्तान में 30 प्रोडक्ट शामिल है, जिसमें चार किस्म की शैम्पू के साथ साथ चार किस्म ऑयल, दो किस्म बेहतरीन ब्यूटी क्रीम, इसी के साथ साथ दो किस्म की फेस वॉश, तीन किस्म की ब्लीच, चार किस्म सोप और दो किस्म के बेहतरीन ओ प्रोडक्ट, जो आपको रिजल्ट के साथ साथ जो है ना बिल्कुल जी खूबसूरती भी देगा और 0% बदबू। दो किस्म की हेयर रिमूवर एलवेरा एंड द फ्लावर। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट आप लोग इंतहाब कर ले,
अगर आप सेटिस्फाइड नहीं थे, अगर आप मुतमईन नहीं थे, अगर आपको रिजल्ट ना मिल जाए, तो बाकी लोगों की तरह या बाकी सुनने वालों की तरह मैं जो है ना, सुनाने वालों की तरह मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि कान से पकड़ के डस्टबिन में डाल दे, बाहर फेंक दे, नदी में फेंक दे, नाली में फेंक दे, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। असलम लोधी हमेशा कहता है कि आप हमारी प्रोडक्ट का इंतजाम कर ले, रिजल्ट ना मिल जाए, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, आप लोग मुतमईन नहीं थे, जिस दुकानदार से भी आपने खरीदा है, जिस दुकानदार से भी आप लोगों ने इसरा कॉस्मेटिक पाकिस्तान खरीदा है, उसी दुकानदार के पास जाए, उसको बोले कि हमारी पैसे वापस दे दे और अपनी प्रोडक्ट वापस ले ले। लेकिन इसी दिन का, इसी टाइम का कोई भी खर्च ही नहीं आएगा कि मैं बिल्कुल जी 110% मुतमईन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रोडक्ट से कि वो आप लोगों को रिजल्ट देगा। नुबिया चिकम देते हफ्ता सोली नकोई लेका पसी वजह नकोई ओली नकोई।

तो बिल्कुल जी, आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं इंतहाब हमारी सना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की दो किस्म की जो बेहतरीन सोप है, बेहतरीन साबुन है, तो आप लोग इंतहाब कर ले, इंशाल्लाह आप लोग मुतमाइन रहेंगे। और मैं इसी तरह बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप लोग प्रोडक्ट का इंतहाब करते हो तो बैक साइड पे उनका उन पर जो है हमारी हेल्पलाइन और जनाब इसी जुबेर साहब का नंबर लिखा होता है, तो जब आप लोग प्रोडक्ट का इंतहाब करते हो तो बैक साइड पर जहाँ पे प्राइस मेंशन होता है, प्राइस लिखा होता है, उसी जगह पे बिल्कुल जी टू ब्रदर्स के साथ साथ उन पर 0333-50-19-20 नंबर लिखा होगा, उसी पे आप लोग बिल्कुल जी कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी आप लोगों ने अगर करना है, कुछ पूछना है, एड्रेस पूछना है, प्रोडक्ट के हवाले से पूछना है, तरीके इस्तेमाल के बारे में आप लोगों ने पूछना है, बिल्कुल जी बिंदास कॉल करें, मैसेज करें, बिल्कुल जी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम में आप लोगों ने कॉल कर दें, मैसेज कर दें, आप लोगों के अभी कॉल्स आ रहे हैं, बस दो मिनट्स मुझे दे दे, फिर आप लोगों की कॉल का सिलसिला मैं शुरू कर लेता हूँ। शुरुआत में मैंने बहुत सारी कॉल ले ली, बाद में भी लूंगा, जब तक मेरे पास टाइम है, टाइम मैनेज करके मैं आप लोगों से जरूर बात करूंगा। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, उसको भी मैं शामिल कर लूंगा। लेकिन अभी अगर कोई हमारी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, बिल्कुल जी ये खामोश लिस्टर है, खासकर मानसेरा वाले, अटक वाले, हिजरो वाले, खैराबाद वाले और गदून जदून, इसी के साथ साथ शांगला में हमारी आवाज सुनाई दे रही है, तो बिल्कुल जी आप लोग भी आए हमारे साथ प्रोग्राम में शराकत कर लें, अपनी प्यारी सी आवाज को शामिल कर लें।

0: ओके जी, टांग से हसाम भाई सलाम। गुलाले सालगिरह है, प्रोडक्ट लेने हैं, होलसेल डीलर बता दे। अच्छा जी, टांग से नरगिस है मेरी प्यारी बहन, वो कह रही है कि हमारी घर में एक सालगिरह है और एक फंक्शन भी है, तो उसके लिए हमने होलसेल पे प्रोडक्ट लेनी है। तो बिल्कुल जी नरगिस, आप इस तरह कर लेना, जब आप खुद जाए टांग या किसी को आपने बेचना है तो उससे आप कहना कि आप टांग जब बाजार जाओगे, तो टांग बाजार जब आप पहुंच जाओगे तो उधर आपने किसी से भी पूछना है कि टांग में मंसूर जनरल स्टोर दुकान नंबर 4-5 सदाम मार्केट का पूछे, फिर उसमें हमारी एक बेहतरीन हाजी जरबत खान से मौजूद होगा, उसे आप कहें कि मैंने जुबेर साहब को बताया था और उसने आपका नाम तजवीज किया है हमें। तो जब आप हाजी जरबत खान साहब से मिलोगे, उससे जब आप प्रोडक्ट खरीद लोगे, तो पहले आप कुछ भी ना बताएं, इंशाल्लाह वो इतना अच्छा और बेहतरीन बंदा है ना, इतना बेहतरीन बंदा है कि वो बिना बताए, वो बिना सिफारिश किए आपको प्रोडक्ट होलसेल पे देगा और इतनी अच्छी कीमत और अच्छी प्राइस पे देगा ना कि आप मुझे दुआएं दोगे, मुझसे पहले आप हाजी जरबत खान साहब को दुआएं देंगे कि वो इतना अच्छा और बेहतरीन बंदा है। मंसूर जनरल स्टोर था जमुंग द टांग डिस्ट्रीब्यूटर दे हाजी जरबत खान से, वो इनशाला था सुवर्षी अगी सर मिलाओशी सिकल हम था सु मिलाओशी सिर्फ दुम रहुम वर्तमो आए जगह चिया हुई दुम रख कीमत सर जमुंग प्रोडक्ट चली करना चिस्तासु दवाई लुबोर तो जरूरत हम निराशी सिर्फ और तो दुम रोई चिजमुंग तो कूर द पारा और डेर प्रोडक्ट पकार दी पर होलसेल रेट सर पकार दी इनशाला इनशाला और के ब्याह हम नरगिस था उस तो किस्म मसला वा नुसिफर 333-50-1920 पानी था सो बिल्कुल जुबेर से कॉल को लेशी अगीब और सर पखपल खबर उकी और तासु तब इंशाल्लाह प्रोडक्ट की यो कुली और कैसा कीमत सर मिलाओशी जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: दाखपल रेडियो रा सर बंद की जी चिस्तासु आवाज सफारा शी सीधा दगा शान तकड़ा सड़े
1: खा
0: पखेराले स्त्रीमुशी तासु लंबुआई मा
1: الحمدللہ
0: ماشاءاللہ چر دکل کل اللہ دی سے ضرورت نہ راولی گنا چی اگر چھٹی راضی اگر برازی او بس اسی بے سب چھٹی نہ کو سیدا
1: بالکل سیدا
0: داس می خو خدا کنا
1: داس می خو خدا تام
0: بھائی بس چستا سو خو کی یوتا سو خوشالی کنا بس مونگا خوشالی
1: مال طرف نہ فیضان تو سلام
0: اوکے جی
1: او اختر زمان تا او شفیع اللہ خان تا
0: جی
1: او سلیم کو خیل تا
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننه او شکریہ او ټول دستا السلام رسیدو خان

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 मेगाहर्ट्ज़
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: अहमद भाई दुकान पता उखाया
5: हो रही, दुकान पता इधर सर नोट का, मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर, हैबर प्लाजा, दुकान नंबर 4, मंगल मिला।

जी बिल्कुल सही और बिल्कुल हर कॉस्मेटिक जनसुर की तासु पसंद से मिलेगी एशमा कॉस्मेटिक टूल प्रोडक्ट्स कचरता के हम न मिलेगी बिल्कुल तासु कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने हम कॉल को लिशो दिन वा मुंगता हूं दी नंबर बने कॉल को लिशे और तासु बिल्कुल मालूम दर को छे तासु दल तक पदे जाय की मिलेगी दे कॉस्मेटिक स्टोर के दे जनसुर के तासा दल तक मिलेगी ठीक था नो बिल्कुल कंपनी हेल्पलाइन नंबर जान सरा हमेशा नोट्स होते और कंपनी हेल्पलाइन नंबर दे 0342 311 2292 0342 311 2292 दे नंबर बने दस प्रोग्राम की कॉल को सॉरी कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने कॉल को लिशे और प्रोग्राम की चुकम देता सुन तक कॉल के वाले पोद्वित वाड़ो नंबर बने ठीक था बिल्कुल नन चुकम दे बिल बिल मतलब मोबाइल की अक्सर चुकम दे यू नंबर बने सुख ट्राई की ना नो आगा चुकम देना मिलेगी सही जगह चे बल नंबर चुकम देता ऑफर जी और नन चुकम दे बिल बिल मतलब मोबाइल के दा नंबर दी तस बदे नंबर बने कॉल करे ठीक था दवा नंबर दी नो बिल्कुल यू नंबर दे 0345 9335 2580 या 0345 9332 580 बल नंबर दे 0331 52 65 340 यानी 0331 52 65 340 0331 52 65 340 दे नंबर बने तासुंग ते प्रोग्राम की लाइव कॉल होंगे वाली मैसेज के वाली ओ मालूमात रखे वाली से आया तासु माँ आवाज कम कम रेडियो माने हो रहे उम्मीद रेडियो चार सदे बने तासु रहे या जलमी रेडियो बने तासु रहे या दीना इलावा तासु दमंग रेडियो बने आवाज हो रहे वर्षा या करक रेडियो बने मा प्रोग्राम तासु रहे या दिन लवा लकी रेडियो बने आवाज हो रहे और या टांग रेडियो या डिहान रेडियो बने तासु आवाज हो रहे तासु बिल्कुल मैसेज कॉल हम कॉल नंबर बने कॉल

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, मार्केट दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 0313-91-27-273।
3: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांक की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4।

चलिए मैं इधर लिट कॉम अपसे पर 342 311 22 1 MSG वही चला गया BGM चली गई बोले यार हमारी में खराब था इंजीनियर अनुबस उनके ब्रेक पर कि कौन

आदि केसर मोबाइल जोन मंगल मेला इलाज मार्केट के तमाम प्रोडक्ट मौजूद है। दुकानें वजीर की लिखे होम तमाम प्रोडक्ट मिला हुई है। इस्लाम ने मेघबुल का वेलकम दर तक वॉइस दी बिल्कुल ओके जमुन के परेडु वालेकुम सलाम मेघबुल का और तो प्रोग्राम ला बोले ना रात ली मनसी सिरम रागले देखे ना आयशा एंड लाइवा एहसास प्रोम سرقي وجلاني تبكيني لو اتسويها اسمع. This is me first message.

जनाब आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, और जनाब केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें ब्यूटी क्रीम्स हैं, फेस वॉश हैं, साबुन हैं। हमारा हेल्थ के हवाले से मैं बात कर रहा था आप लोगों के से, क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं, और फिर उसी के मुताबिक वो ढेर सारे खर्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि हर बंदा सेहत का मुतलाशी होता है। तो हमने भी कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं हमारी सोसाइटी में, और उनके इलाज हमने ढूंढे हैं जड़ी बूटियों से, कुदरत के ख़जानों से हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि आपको हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, फालिज लकवा से मुतासरा हिस्से में फिर से जान डालने के लिए, या ऐसे बच्चे जो चल फिर नहीं सकते या जिनको आसाबी जो है जिस्मानी कमज़ोरी है, वो हमारे शिफाए दर्द ऑस्ट्रिच ऑयल यानी कि शुतुरमुर्ग के तेल को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनके पट्ठों के अंदर जान आएगी, उनका दर्द खत्म होगा और जड़ से खत्म होगा। 700 रुपए का हमारा ये ऑयल है जनाब, जिसे बोलते हैं केसन शिफाए दर्द, ठीक है जनाब, हासिल कर सकते हैं। कल आपको हमने बताया कि जनाब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों के अंदर मोटापे का होता है, सो मोटापा जो है बहुत बड़ी मुसीबत है, और मोटापा को ख़त्म करने के बहुत सारे नुस्खे लोग आजमाते हैं, बहुत सारे कामयाब होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फार्मूला इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज भी सुबह मुझे पहाड़पुर में जो है एक दुकानदार की कॉल आई और वो कह रहा था कि भाई 2 दर्जन 15 दिन वाली फक्की और 1 दर्जन जो है महीने वाली भेज दें, यानी कि एक एक दुकानदार आप 2-2 दर्जन हमसे ये प्रोडक्ट मंगवाता है, केसन वेट कम पेट कम, जो कि वजन कम करने वाली फक्की है, जो कि पेट का पेट की चर्बी पिघलाती है और आपको स्मार्ट बनाती है, ठीक है। इसके हवाले से कल हमने आप लोगों के साथ डीपली बात की है और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करती है और इसको खाने का तरीका कार क्या है। फिर मैं बताता चलूं कि ये जो वजन कम करने वाली, चर्बी को पिघलाने वाली हमारी फक्की है, आपने 2 चम्मच रोजाना खाने हैं, 1 चम्मच खाली पेट पानी के साथ और 2 चम्मच रात को खाने के बाद। सबसे पहले तो ये आपका हाजमा ठीक करेगी, आपकी भूख बैलेंस होगी, और उसके बाद जनाब आपकी जिस्म से इजाफी चर्बी पिघल कर आपके यूरिन के थ्रू पास होना शुरू हो जाती है। आज एक और जनाब हमारी हेल्थ की प्रोडक्ट है जिसका आपके घर, अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो आपके घर के अंदर कोई एक फर्द ऐसा होगा जो इस मर्ज में जरूर मुब्तला होगा, ठीक है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और ये शिफा का हमारा, शिफा की जो प्रोडक्ट है ये मैदे के अमराज के लिए है, मैदे के लोगों के लिए है जिनको मैदे का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। मैदे के मसले वैसे होते क्या क्या हैं, जो अमराज होते हैं मैदे के जनाब, उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है जनाब, उसे हम कहते हैं जी बदहजमी, ठीक है जनाब। बदहजमी ये होती है कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आपका मैदा प्रॉपर तरीके से उसको हजम नहीं कर पाता है, यानी कि जब आपका मैदा सही तरीके से तेजाबियत नहीं बनाता, ठीक है जनाब, वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, तो आप जितना भी खाते हैं वो खुराक जो है छोटे छोटे जरात में तकसीम नहीं हो पाती है, वो बहुत देर तक आपके मैदे के अंदर ठहरी रहती है, यानी कि वो जिसके अंदर तेजाबियत होती है वो इनसफिशेंट होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार मसला होता है, खुराक खाने के बाद आपके हलक को वापस आती है, ठीक है जनाब। आपने सोबत खाई, आपने चावल खाए, आपने गोश्त खाया, वो बार बार चीज़ें जो है आपके हलक को, आपके मुंह को वापस आ रही होती हैं, और ये प्रोसेस जो है तकरीबन 2-3 घंटे तक रहता है ऐसा प्रोसेस। अगर आपको ऐसा मसला है कि आप खाने के बाद जब आप पेट भर के खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपको ये वाला मसला रहता है कि जनाब खुराक आपके बार बार मुंह को आती है, इसको इसो जो है रिफ्लेक्स, इसोफेगस रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहा जाता है, कि यानी कि मैदे से चीज वापस आपके मुंह को आ जाती है, और वजह क्या होती है कि आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है वो इनसफिशिएंट है और आपका मैदा जो है वो चीजों को पिघला हजम नहीं कर पा रहा, और 2-2.5 घंटे तक आप इसी सर्कल के अंदर रहते हैं कि चीजें आपके मुंह को आती हैं और बहुत बुरा भी लगता है, साथ वाले भी इरिटेट होते हैं, तो भाई ये बदहजमी है, ठीक है जनाब। इसके लिए आप हमारी ये प्रोडक्ट जो है केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप, हमारे सिरप का नाम है, सिरप ये पीने वाला है जिसका नाम है हाजमा कंट्रोल सिरप,
केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, इसका नाम याद रखिएगा ठीक है जनाब। और इसकी कीमत 180 रुपए इसकी कीमत है, आप खरीद सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं आपके मैदे के मसाइल, जैसे कि ये एक मसला मैंने आपको बताया है कि बदहजमी, मैदे में बोझ होना, ठीक है जनाब। एक और मसला है जनाब, मैदे के सीने के अंदर जलन, ये बहुत ज्यादा लोगों को होता है। ये जो पहला मैंने आपको मसला बताया है ना, बदहजमी बोझ, ये भी कुछ लोगों को होता है, लेकिन इस वक्त हमारी सोसाइटी में तकरीबन 70-80% लोगों के अंदर ये जो है जनाब, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी ठीक है जनाब, तेजाबियत जिसको कहते हैं, कि जनाब जैसे आप खाना खाते हैं आप अपने सीने को मल रहे होते हैं, यानी कि कह रहे ये क्या हो गया, सीने के अंदर जो है आपको फौरी तौर पर जलन होने लगती है, ठीक है जनाब, जलन होती है। तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जब आपके, यानी कि पहला जो मसला मैंने आपको बताया है बदहजमी का, कि आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है वो कम है, जिसकी वजह से आपका मैदा हजम नहीं कर पा रहा और आपको साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरा मसला ये होता है कि आपके मैदे के अंदर तेजाब ज्यादा है, ठीक है, तेजाबियत ज्यादा है, और जैसे आप खाना खाते हैं और खुराक जैसे आपके मैदे के अंदर जाती है, तो वही तेजाब जो आपके मैदे के अंदर होता है ना, मैदे के अंदर तेजाबियत होती है, ठीक है ना, ये जो आपका हाजमा होता है उसी तेजाब की वजह से होता है जो आपके मैदे के अंदर पाया जाता है, वही तेजाब जो होता है ना आपकी खुराक की नाली को आ जाता है, ठीक है जनाब। अब जो खुराक की नाली का अंदर से स्ट्रक्चर है, जो मैदे के अंदर से स्ट्रक्चर है, वो टोटली मुख्तलिफ है, ठीक है जनाब। जो मैदे का है वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो यही तेजाब जब आपकी खुराक की नाली को ऊपर आती है तो आपको सीने में जलन शुरू हो जाती है। वो सीने में जलन नहीं होती बेसिकली, वो खुराक की नाली के अंदर जो है जलन हो रही होती है, और आप बोलते हैं कि मुझे तो भाई सीने की जलन का मसला हो गया है। तो जनाब इस सूरत हाल में भी आप हमारी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है उसकी मिकदार जो है बैलेंस हो जाएगी, ठीक है जनाब। ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा जो है अक्सर लोगों को कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है जनाब, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, कब्ज की वजह से भी मोटापा हो जाता है, ठीक है जनाब। कब्ज कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको मोटापा भी हो जाता है। तो जनाब आप हमारा ये कब्ज की अगर आपको सूरत हाल है, ठीक है जनाब, या फिर आपको खाना खाने के बाद तेजाबियत का मसला है, सीने में जलन का मसला है, या फिर आपको गैस हो जाती है खाना खाने के बाद, तो क्या कर सकते हैं कि आप इस सिरप को अपने पास रखें, यानी खाना खाने के बाद अगर आप दो ढक्कन दो चम्मच इसके लेते हैं या एक चम्मच भी लेते हैं, तो जनाब आपके जो ये मसले हैं, ये गैस, उफारा, इस तरह के मतली, ठीक है जनाब, आंतों की सोजिश या पेट में दर्द वगैरह अगर हो तो पेट के दर्द के अंदर भी ये बहुत ही जबरदस्त हमारी प्रोडक्ट है, नेचुरल और बिल्कुल जी एडवांस फार्मूला है। इस वक्त जितने भी मैदे के अमराज के सिरप मौजूद हैं जनाब मार्केट में, ये उन सबसे एडवांस फार्मूला है। एडवांस होने के साथ साथ इसके अंदर जो चीजों की मिकदार है, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप के अंदर जो चीजों की मिकदार है, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं, वो क्वांटिटी में ज्यादा है। यही वजह है कि हमारे पैक के ऊपर लिखा होता है कि 1-3 चम्मच आप लें काफी होगा, यानी कि बाज सिरप होते हैं ना उसके ऊपर आपको दो दो निशान लगा के देते हैं, भाई दो सुबह, दोपहर, दो दोपहर, दो शाम का पिए। हमारा जो सिरप है वो इतना पावरफुल है, हाजमा कंट्रोल सिरप, कि इसको आप एक चम्मच भी अगर 24 घंटे में लेंगे ना तो आपके मैदे का मसला हल रहेगा। यानी कि सिर्फ एक चम्मच या एक ढक्कन पीने की सूरत में, एक चम्मच पिए, ढक्कन ना पिया करें, चम्मच से चीजें इंटेक किया करें तो बेहतर होता है। एक चम्मच अगर आप ले लेंगे तो भाई 24 घंटे में आपका मसला हल रहेगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे क्या ये वक्ती तौर पर असर देगा, नहीं, आपकी बेसिकली मैदे के अंदर जो है ये प्रॉब्लम जब होते हैं तो एक जरासीम होता है जिसको बोलते हैं एच पाइलोरी, एच पाइलोरी।

जी जनाब, ये खास किस्म का जरसीम होता है एच पाइलोरी। जब ये आपके मैदे के अंदर मौजूद हो, ठीक है जनाब, उससे जब ये मौजूद होता है तो अंडे देता है आपके, वहां पर प्रोडक्शन को और खराब करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, जरसीम बढ़ते हैं। और जब तक ये किल नहीं होता ना, ठीक है जनाब, जब तक ये जरसीम है, ठीक है जनाब, तो इसको एंटीबैक्टीरियल तरीके से भी खत्म किया जाता है। आपको जो है इंजेक्शन ड्रिप भी लगती है एंटीबायोटिक की, पीपीआई की ड्रिप्स भी आपको लगती हैं, या फिर एंटीबैक्टीरियल टैबलेट भी आपको खानी पड़ती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी जो दो प्रोडक्ट हैं, वेट कम पेट कम फक्की और हमारा जो हाजमा कंट्रोल सिरप है, ये उस जरासीम को खत्म करने के लिए इंतहाई काबिल दोनों चीजें हैं, और बहुत जल्द आपके मैदे से वो जरासीम खत्म हो जाता है। तो जनाब, इस जरासीम को, एच पाइलोरी को खत्म करने के लिए, जरूरी नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाए, आप ये सिरप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी के दौरान जो खत्म हो सकता है, लेकिन जैसे ही उस जरासीम का खात्मा होता है आपके मैदे की सूरत हाल जो है एकदम से ठीक हो जाती है। बहुत ही प्यारी प्रोडक्ट है हमारी इस वक्त मार्केट में। यकीन कीजिए कि सिरप बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, कंपनियां 400-400 रुपए का एक सिरप बेच रही है, 400-400 रुपए का, ठीक है जनाब, 450-400 रुपए का। लेकिन हम आपको कहते हैं कि केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप एक दफा लीजिएगा हमारे कहने के ऊपर, सिर्फ एक दफा, उसके बाद आपका मैदा, आपका जिस्म और आप खुद मजबूर होंगे कि आप अपने घर के अंदर इस सिरप को रखें, जो आप ड्यूरिंग सफर, अगर आप कहीं पर सफर पर जा रहे हैं और ऐसा बंदा कि जिसको उल्टियों का खदशा होता है तो वो सफर से पहले 2-3 इसकी चम्मच पी ले तो इंशाल्लाह उसको उल्टी भी नहीं आएगी। तो जनाब, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप एक बहुत ही इफेक्टिव हमारी प्रोडक्ट है। वैसे तो हमारी कंपनी जो है ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है जनाब, हमने आगाज ऑयल और शैम्पू से किया, और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी कंपनी को टेस्ट करना हो ना, ठीक है जनाब, हमारी कंपनी को देखना हो कि भाई इस कंपनी की चीजें कैसी होंगी, इसका स्टैंडर्ड, इसका मयार, इसके रिजल्ट कैसे हैं, तो हम कहते हैं भी हमारा ऑयल और शैम्पू खरीदिए आप, ठीक है जनाब। प्राइमरी प्रोडक्ट है हमारी, और सबसे पहले हमारे माहरीन, हमारी कंपनी ने जो चीज लोगों के लिए बनाई वो केसन हेयर ऑयल, और उसके बाद केसन शैम्पू जो है हमने तैयार किया। तो जनाब, ये केसन ऑयल और शैम्पू भी मौजूद है, अगर आपको बालों का मसला है, बाल आपके गिरते हैं, आप यकीन कीजिए कि जो केसन हेयर ऑयल है इसके अंदर 17 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, और 17 इंग्रेडिएंट्स का मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जो 17 अज्जा है ना, 17 अज्जा, उसमें से 10 अज्जा ऐसे हैं जिनका काम आपके गिरते हुए बालों को रोकना है, ठीक है जनाब। हमारी हर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट इसके अंदर मौजूद है कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आप हमारा शिफा दर्द खरीदेंगे, अगर आपको बालों का मसला है तो आप स्पेशल फार्मूला हमारा केसन हेयर ऑयल और शैम्पू खरीदेंगे, अगर आपको मैदे का मसला है तो आप अपने मैदे के हल के लिए केसन का जो हाजमा कंट्रोल सिरप है उसे हासिल करें।

0: जी जनाब, इस वक्त आप मुझे तीन रेडियो स्टेशन से एक साथ सुन रहे हैं। यह है केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम डेर इस्माइल खान में। आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ग्लोबल एफएम 91 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर, पहाड़पुर में रेडियो पैगाम 97.4 की फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और टांक में रेडियो अमन 88.4 जी जनाब 88.4 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर। और हमारा नंबर, हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे नंबर 03449363366 के ऊपर, और 03137985457 दो नंबर आप लोगों के लिए हमारे एक्टिव हैं। एक टेलीनॉर का नंबर है 03449363366, और दूसरा हमारा नंबर है जनाब जोंग का 03137984554। आप लोगों के मैसेजेस हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया बखर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें मैसेज करके हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। इनके प्रोग्राम, इनके मैसेज को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और टांक में हमारे प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलते हैं? टांक के अंदर जो है सदाम प्लाजा है जनाब, सदाम प्लाजा जो ट्रैफिक चौकी है टांक के स्टार्ट के अंदर, वहां पर मौजूद है सदाम प्लाजा, और वहां पर है हाजी जरबत खान का सेटअप जिसे मंसूर जनरल स्टोर कहते हैं जनाब, और वहां पर आप हमारे सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ये हाजमा कंट्रोल सिरप, ये शिफाए दर्द, ये जो है वेट कम पेट कम फक्की, ये ग्लूटावाइट क्रीम, ये जाफरानी क्रीम, ये लवली फेस वाश, ये गो पिंपल फेस वाश, ये मिल्की सोप, ये जाफरानी सोप, ये ग्लूटा सोप, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। और टांक वालों के लिए हमारी स्पेशल ऑफर चल रही है बिस्मिल्ला पैकेज, और बिस्मिल्ला पैकेज ये है कि आप लोग जब बिस्मिल्ला कर रहे हैं केसन के ऊपर तो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि बिस्मिल्ला कीजिए केसन नेचुरल पाकिस्तान की, 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदिए, और 1000 की चीजें खरीदने के ऊपर आपको 500 रुपए की दो चीजें हम आपको फ्री दे रहे हैं। और ये ऑफर सिर्फ टांक वालों के लिए, पहाड़पुर और डेरा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि नया नया हमने शहर ओपन किया है टांक, तो वहां के लोगों को हम अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। तो जनाब आप 1000 रुपए की कोई भी चीजें खरीदेंगे मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा से, तो वहां पर दो चीजें आपको फ्री दी जाएंगी, एक जाफरानी साबुन, और दूसरा जो है हमारा परफ्यूम है जो कि पेन परफ्यूम है, जो आप जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, ट्रैवलिंग परफ्यूम है। दो किस्म की हमारी खुशबू है, एक अकबर और एक जारा। अकबर जो है वो मर्दों के लिए है और जो जारा है वो खवातीन के लिए है। तो आप मंसूर जनरल स्टोर से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं टांक में। इसके अलावा अफसर खान प्लाजा की सारी दुकानों के ऊपर केसन के प्रोडक्ट मौजूद हैं। अलबदर मार्केट पुरानी सब्जी मंडी के साथ वहां पर तमाम दुकानदारों के पास हमारे प्रोडक्ट मौजूद हैं, और इसके अलावा डबरा में भी तमाम दुकानदारों के पास केसन के प्रोडक्ट मौजूद हैं। और इसके अलावा मंसूर जनरल स्टोर जो कि जनाना जनरल स्टोर है मोहल्ला शादी खेल, ठीक है जनाब, जो खवातीन मुझे इस वक्त सुन रही हैं, ठीक है जनाब, जो मंसूर जनरल स्टोर है इनका फीमेल का भी सेटअप है, अगर बाजार खवातीन नहीं जा सकती तो मोहल्ला शादी खेल अमा खेल, ठीक है जनाब, मोहल्ला शादी खेल अमा खेल में जनाब इनका ये जनाना स्टोर है, तो आप यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। डेर इस्माइल खान में सुन रहे हैं तो जनाब गुलशन कैश एंड कैरी पर आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है जनाब। इसके साथ साथ जो है अमान हरसेरा फारूक हरसेरा ये चुगला के साथ जितनी दुकानें हैं, अमान हरसेरा फारूक हरसेरा, ठीक है जनाब, फैमिली शॉपिंग सेंटर, ठीक है जनाब। इसके अलावा गोमल मार्केट के अंदर जो है अलफरीद कॉस्मेटिक मबरूका है, शीश महल है, ठीक है जनाब, साथ में अलफरीद कॉस्मेटिक इनके पास आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। गुलजार मस्जिद के सामने विकी कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पॉइंट वाले भाई हैं जनाब, उनके पास केसन के सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा डेर इस्माइल खान के अंदर ही हाजी गुल जनरल स्टोर बाकरी बाजार, राजा जनरल स्टोर बाकरी बाजार है, तोपा वाले बाजार के ऊपर जो है इरफान दवा खाना है, और फौजी द खोका जी जनाब वहां पर भी आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसके अलावा स्टेशन रह गया हमारा जनाब जो है पहाड़पुर का, तो जनाब पहाड़पुर में भी हर जगह आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, हर जगह पर मिलेंगी। और पहाड़पुर में पहाड़पुर में अगर आप रंगपुरा के ऊपर हैं तो हैदर मेडिकल स्टोर, हैदर मेडिकल स्टोर, नियाजी मेडिकल स्टोर और जमील नियाजी, ठीक है जनाब, जमील नियाजी रंगपुरा के ऊपर है, उसी के साथ है हसीब जनरल स्टोर, तो आप वहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। और पहाड़पुर शहर के अंदर जनाब जीशान जनरल स्टोर, नवीद जनरल स्टोर, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड साथ में ताज महल एंड साथ में बिस्मिल्ला, फहीम भाई के पास, इन सब के पास आपको हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि जहां जहां हमारी आवाज मौजूद है केसन के सारे प्रोडक्ट्स लाखों रुपए की मालियत में आपके इलाके के अंदर मौजूद है। आलिया सुन रही हैं, आलिया कैसी हैं आप बखर में? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? कल शो नहीं सुन सकी भाई, आज सुन रही हूँ भाई। मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है, आवाज का मसला बन रहा है। जनाब मोबाइल को जरूर ठीक कराइएगा, क्योंकि अगर स्पीकर ठीक नहीं होगा तो फिर आप लोगों को अपनी आवाज कैसे सुना पाएंगी, आप हमें अपनी आवाज कैसे सुना पाएंगी। हमारे साथ फर्स्ट कॉलर मौजूद हैं जनाब, इनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल
0: है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शबीर उस्ताद हमारे साथ मौजूद है, कैसे है मोहतरम
1: जी? अल्लाह की मेहरबानी है सर, प्रोग्राम सुन सकते हैं चार तीन जितने माशाल्लाह जे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं।
0: अच्छा जी, अच्छा मैं नीचे उत्ते तले थी में दिया, अच्छा मैडी मेरे को नहीं पहुंची फिर तू सब पीती बैठे हुए माशाल्लाह।
1: ऐसा तो फिक्स ये ले थोड़ा पहले सियारा ताने ना मशहूरी होने में पसंद है, चाह गुरक्षी जीवन जी तो नाल आखिर तक आ जाऊंगी थोड़ी थोड़ी चाहते उन प्रोग्राम की तवज्जो।
0: अच्छा जी, यानी कि नूह मजे इकट्ठे खिंदे पे आउंदे इन टाइम में तुसा
1: जी जी। तो एक तो सिग्नल का मसला ठंडा थे माशाल्लाह, जरा हाजमा कंट्रोल थी गया, वेट कम पेट कम थी गया, थे शिफा दर्द ये लाजमी है सारे
0: स्पेशल असा गाल करने बैठे हैं हाजमा कंट्रोल सिरप देते कि हर घर दी जरूरत है। सही
1: बिल्कुल बिल्कुल, घर घर दी जरूरत है, क्योंकि इंसान दा जरा मैदा है इंजन है, अगर इंजन ठीक ना हो तो कभी चल नहीं सकती। मसला मेन जरा कमावना ही है, खाना ही है, खाना साडे मारे बने, असा खाने के मारे नहीं बने। थोड़ी इया है तैयार करो जो एक थोड़े जरा खाने के ज्यादा ओवर लोड करेंगे पेट के बीच, जिसकी वजह को जरा तकलीफ थी है, तो खाना साडे मारे अल्लाह पाक ने नियमत बनाई है। लेकिन उस नियमत को जो असा इतना खाऊं जो खाना असा खाने के मारे न बन वनू इया थी वन साकू खाना भी बने, तो असा ओवर न खाऊं जरा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो उतना खा जो चंद निकाले चंगे रांधे जो तू जो है ना उसको उसको रोक दे हाथ को ते हक लाल दखू ते अगर कोई मसला थी भी हो हाजमा कंट्रोल जरा सारे सारे निजाम को चाहे असाम खालू चाहे खादी बैठे होने इसको कंट्रोल करेगा और सारी मेदे की जलन थी वेंदी क्योंकि ज्यादा मिसाल जाती उसको बच नहीं सकते क्योंकि चढ़ गए अगर मिसाल न सकू तेज मिर्चा वही नुकसान है। लेकिन चढ़ इस किस्म के गए जो थोड़े नमक घट हो गए या मर्च मिसाल वाले पत्ते असा न घटू तो सोबत करारी थी नहीं तो असा इसे चढ़ गए तो वाती फिक्र न करो अगर हाजमा कंट्रोल है तो हर शे को खत्म कर देंगे, ये लाजमी है, ये बर्फ कर देंगे सारे मेदे को जख्म को खत्म कर देंगे। जेडी शे खाओ एतदाल न खाओ ते हाजमा कंट्रोल पीओ बिल्कुल बेफिक्र थी के बिल्कुल खाओ जितनी खाओ, लेकिन जरा ना हाजमा कंट्रोल लाजमी हो अच्छा जरा ना सारे बारे बहुत अच्छा एक नियमत लिखती है पैसा दी एक वेट कम पेट कम ते शिफा दर्द भी है ते बाकी जरा ना जितने भी चाहे सो पीन तो बहुत अच्छे सफाया जरा खासकर सफाया दर्द हाजमा कंट्रोल तो वेट कम पेट कम ये असलू जरूरियात बन चुकी है। इन त्रै छाइया सारे मारे जरा ना मसले जी वजह को त्रै छाइया लाजमी घर के बीच रखो ते खासकर जरा हाजमा कंट्रोल लाजमी है जो रात को कई वे तकलीफ थी सकती है तो एक घर की पियो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं रात ही चल रही तो माशाल्लाह मेरे सेट रहा है। बाकी साबिर दर्जी साहब तो कोई सलाम देना पे इस टाइम सुनता पे पंजाबी मेरा दोस्त है मेरे पंजाब के मैं भी पाऊ दोस्त ही लेकिन साबिर दर्जी को डिग डिग सलाम मुना सेट अल्लाह करे वाला है तो उसकी बहुत शिद्दत ना लता कमी महसूस करेंगे अमजद कुरैशी थी गया नजर हसन से बाकी सारे सुनोकाम
0: बहुत शुक्रिया। और हर घर की जरूरत है जनाब, घर घर की जरूरत है केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, कीमत में कम है, रिजल्ट में बहुत ही इसके जबरदस्त रिजल्ट है। और आप एक दफा अगर आपके घर में ये सिरप आ जाता है ठीक है जनाब, ये हाजमा कंट्रोल सिरप, तो आप हमेशा इसे अपने पास रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वेलकम बैक स्टडी मशाई
0: जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है अब्दुल हादी?
2: चार गए
0: हाँ देख गिनो सही, बस कुछ दीवार सा को दे हर के को सुझान वैसे अल्लाह तो शुक्र है ठीक ठाक कितना हवा चुलते वे कितना वे मसला कितना खतरनाक होंदा है ते हर घर ही छे ते सस्ता इलाज असा केसन दे तरफ दोक देंदे पए सई
2: बहु मजे दे गल सी ने एक दोस्त को मैं आखायो मेरा दोस्त थोड़ा मोटा है ना
0: अच्छा जी ठीक है
2: मैं के पक्की आओ इंशाल्लाह तुसा को शिफा मिलवे सी
0: हां बिल्कुल ना काकू को इस्तेमाल करो ओ ता वजन कम
2: बहु गंदा लगदा ना
0: हां मोटा बंदा कितना चंगा लगदा से घर ला को नहीं चंगा लगदा ते हां जी
2: हां ना कोई हर कोई आके मोटा कीता रहना भी
0: बिल्कुल ही नहीं होता मोटा दुश्मनी ना हो सही दुश्मनी कमजोर हो गया चलो ठीक है लेकिन वो तो चलो कल दी गाल है आई सारी नवी गाल है जो भाई हाजमा अगर खराब हो तो सारा केसन दा हाजमा कंट्रोल सिरप है जरा तुसे पीसो इंशाल्लाह 24 घंटे जे इको ढक्कन ही पीसो तो तारे 24 घंटे मैदे जल नौ सी इंशाल्लाह चलो ठीक है
2: सारे
0: सुना सलाम ठीक है सलाम ठीक है जनाब अब्दुल हादी हमारे साथ रेगुलर हमारे लिस्टनर बन चुके हैं जनाब अभी हमारी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं हाँ जी

जी नाबालिया हमारे साथ ही, इनके मोबाइल के स्पीकर खराब है भाई, कहती है कि मैं जरूर बात करूंगी शो के ऊपर आकर। और जिस दिन उन्होंने बात की थी उस दिन भाई आवाज हमें नहीं आ रही थी। और भाई एक आजिज़ाना गुजारिश करना चाहती हूँ, तो आप पूरा करेंगे प्लीज। आई एम दिलराज फ्रॉम टा

जनाब, दिलराज कह रही है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरी बहन कीजिए रिक्वेस्ट। आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हम बैठे हैं, आज जाना रिक्वेस्ट भेज दीजिए, देखते हैं उसको ओवरव्यू करते हैं। कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सब सुनने वालों को सलाम। मोहम्मद अजहर जो है, मोहम्मद अजहर कहाँ से मौजूद है? पहाड़पुर से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजहर जी। भाई कैसे हैं? पहली दफा आए हैं, इनका मैसेज जो है वो आज पहली दफा फ्लैश हो रहा है मेरे पास, तो ये फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए, तो इनको डेढ़ जरा वेलकम वेलकम टू केसन टी टाइम। और जी जनाब, आप लोग चाय पी रहे थे तो मेरी भी चाय आ चुकी है इस वक्त। जनाब सलाम खलील अवान साहब, कैसे हो? आरजे निसार मसूद नहीं आया आज। अच्छा जी, निसार ने आना है लेकिन उसने हमें ज्वाइन करना है ग्लोबल एफएम 91 से, ठीक है जनाब, स्टूडियो से ज्वाइन नहीं करना। तो वहां पर अभी थोड़ा सा टेक्निकल मसला है कि आवाज जो है वो सही नहीं जा रही दूसरे सेशंस के ऊपर, उस मसले को हल कर रहे हैं हम, ठीक है जनाब। और वो मसला जैसे हल होता है, आज हल हो जाए, कल हल हो जाए, जैसे हल होता है, तो निसार जो है भाई आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ एक और नामी गिरामी नाम, नामी गिरामी नाम।

0: इश्क ही। जनाब मैंने जब नाम उठाया नामी गिरामी, तो यकीन कीजिए मेरे सामने तीन नामी गिरामी नाम आ गए, एक राजा गफूर, एक नौमी मजबूर और एक अरूबा वफा फातिमा। यानी कि ये तीनों के तीनों जो है मेरे लिए नामी गिरामी नाम है, और इसी लम्हे में तीनों बंदे मेरे सामने फ्लैश हुए हैं। तो इन तीनों बंदों में से एक बंदे को मौका दे रहे हैं। जनाब राजा गफूर, ओवर टू यू, अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन नाराज होवे ना, ताकि दुश्मन मोटे ना होवे, तो सारे दुश्मन नाराज ही ना होवे।
1: मोटे बंदे ना होवे, मोटे तो तिखे
0: डह पौंदे ना, अगर वो
1: मोटे भागी नहीं सकदे
0: मोटे लोग सुनते मैं साकू नक स्मार्ट करान दो
1: लड़ाई की वजह तो भाज भी नहीं सकते, मल भी नहीं सकते।
0: अच्छा बात, तो क्या करे सी अगर भाज नहीं सकते तो बात राजा गफूर सारे नाल मौजूद हैं जनाब, और इनसे मैं नाराज हूँ। क्यों नाराज हूँ जनाब? अच्छा जी, ये एक दफा फिर से आवाज आ रही है, राजा गफूर एंड राजा गफूर जनाब, आवाज आ रही है आपको? हेलो, सुन गिनो सही। हाय हाय, चाय का अपना मजा यार, कसम से। हेलो
1: हेलो,
0: जी जी, आवाज आनी पई है सही?
1: आवाज कट करता
0: है। अच्छा भला तुसा कटो सही, हुन बस मुंह थी गई है जी हुन मुंह थी गई। अच्छा जी, आप आ रहे हैं हमें, और हमारे साथ अरूबा वफा फातिमा मौजूद हैं। कहती हैं द यूजर ऑफ ओनली केस एंड प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, माशाल्लाह शो इज वेरी नाइस। चलो जी, और फिर उसके बाद एक और काबिले एहतराम नाम हमारी सुहाना आप ही आ चुकी हैं जनाब, इनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम।
0: आज पूरे डेरे में सिग्नल कमजोर है भाई, जो जिधर से कॉल आवाज सही
2: घर में बड़ी रौनक
0: है। क्या चीज
2: घर में बड़ी रौनक लगी हुई है?
0: क्यों, एफएम चल रहा है?
2: मैंने कहा घर में बहुत रौनक लगी हुई है।
0: हाँ रौनक, मैंने कहा शायद आप कह रही हैं कि हमारे घर में रौनक लगी हुई, क्योंकि जब एफएम स्पीकर के ऊपर चल रहा हो तो फिर रौनक तो लगी होती है ना घर में भी।
2: घर में किसम के रौनक है, अकेली बैठ
0: कर रौनक सारी। ओ अकेली बैठ कर भी आप रौनक फील कर रही है?
2: बहुत, ऐसे जैसे महफिल हो,
0: महफिल लगी हुई,
2: महफिल सजी।
0: अच्छा महफिल सजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज तो अम्मा, आज तो अम्मी बेटा इकट्ठे आ गए, उधर से नौमी मजबूर आ गए, यहाँ से सुहाना आप ही आ गई।
2: देखे फिर
0: माँ बेटा दोनों इकट्ठे आ गए किशन घर के अंदर है जी। नाक में भी दम करते हैं। चाय पिए आज आपने या अभी तक चाय नहीं बनाई आपने?
2: बस अभी उठी हूँ तो केसन शो जैसे लगाया तो फिर अभी चाय बनाऊंगी।
0: अच्छा जी, यानी कि
2: ज्यादा चाय ठंडी हो जाती है।
0: अच्छा, क्या चाय ठंडी हो जाती है? शो के बाद सुनेंगी तो आराम से गरम गरम मेरी अपनी चाय, यकीन करें मेरी अपनी चाय भी ठंडी हो जाती है यहाँ पर पड़ी पड़ी।
2: शो नहीं, शो का टाइम भी है, ऊपर से चाय भी साथ पीते हैं, इतना मजा आता है।
0: अच्छा मजा आता है, जो हाँ, तो हमने आप लोगों के लिए मजा टाइम ढूंढा हुआ है मतलब है।
2: जबरदस्त, और अक्सर मुझसे चूक जाता है ये टाइम।
0: चूक जाता है, आप नींद में सोई होती हैं तो फिर चूकेगा तो सही ना। अच्छा सोना, आप एक बात बोलिए, ये प्रोडक्ट हम जो आज जिक्र कर रहे हैं भी, हाजमे को ठीक करने वाला सिरप, ये आपने इस्तेमाल किया हुआ है हमारा?
2: ये आपने मुझे दिया था ना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट था।
0: कैसा, ये भी सही हकीमों वाली चीज हमने बनाई है?
2: जी आप तो आधे हकीम हो ना
0: सही हकीमों वाली चीज, डॉक्टर वाली चीज बनाई
2: है जी? पेट कम और वेट किया, मेरा पेट कम हो गया है।
0: पेट कम आपका हो गया? अच्छा, आप डायबिटिक भी हैं, शुगर की पेशेंट हैं, तो इस वक्त बहुत सारे लोग शुगर के मरीज भी सुन रहे होंगे ना, तो आपने जब हमारी वेट कम पेट कम फक्की खाई थी तो क्या इफेक्ट आपको आया था?
2: बस उससे वजन कम हुआ, शुगर कम नहीं हुई थी, शुगर मेरी चढ़ गई थी क्योंकि मैंने छोड़ दी थी। तो
0: आपने मेडिसिन छोड़ दी होगी ना फिर साथ में? हेलो जी, सुहाना आप ही की। हेलो जी, आवाज इनकी कट रही बहुत ज्यादा हमारे पास। और ये हम ये नहीं कहते कि आप शुगर के दौरान जो है, शुगर के बंदे का भी वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। शुगर के बंदे का भी वेट बहुत ज्यादा होता है, तो ये उसको कम करने के लिए मुआविन है। और आप मेडिसिन ना छोड़े, हम ये कहते हैं कि जब आप वेट कम पेट कम फक्की को खाएंगे तो आपकी जो मेडिसिन है ना वो कम हो जाएगी। इसका इफेक्ट इतना इंसुलिन बनाने में कि आपकी मेडिसिन की जो मिकदार है ना वो कम हो जाएगी। सुहाना पे आवाज आ रही है आपको? हेलो, अच्छा जी, सिग्नल का मसला है।
2: ये आवाज आ रही है, मेरी नहीं आ रही।
0: हाँ अभी आ रही है। मैंने कहा तो वजन आपका कम हुआ, और आपने एक बात बोली थी जो मुझे अभी तक याद है कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी, तो शुगर की वजह से बड़ी थकावट होती थी मुझे।
2: जी जी, जो सुबह बंदा उठता है ना तो नॉर्मल बंदा तो एक्टिव उठता है, और मैं ऐसे सुस्त हो रही, जैसे 10 बंदों ने मिलकर ना मुझे ऐसे डंडों से मार दियो। अच्छा। जब जी मैं यूज कर रही थी तो मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई थी, घर के सारे काम वगैरह।
0: क्योंकि आपने ये फक्की इस्तेमाल करने के बाद आपने फीडबैक हमें फेसबुक के ऊपर दिया था कि क्या मैजिकल चीज दी है कि मैं तो एक्टिव हो गई हूँ, मैं तो अब काम कर रहे, यानी कि ये फक्की शुगर के मरीज की सुस्ती खत्म कर देती है। बिल्कुल
2: बिल्कुल, नेस्ट भी खत्म कर देती है।
0: क्या चीज?
2: सुस्ती
0: हर चीज खत्म कर देती है, आपको एक्टिव भी कर देती है, और मोटापे को और एक्स्ट्रा चर्बी को भी पिघला देती है।
2: ये काम चोर गधे जो होंगे ना वो ठीक हो जाएंगे।
0: अच्छा, यानी कि काम जो नहीं करते वो हमारी वेट कम पेट कम खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही है?
2: जी बिल्कुल।
0: चलो ठीक है।
2: और पेट घटा घटा सारा
0: पेट, वाकई आप कहती हैं कि ये प्रोडक्ट जो है पेट को घटा देती है, चर्बी पिघला देती है जी।
2: जो भी मुझे देखता है ना वो कहता है इतनी कमजोर हो गई हूँ, इतनी कमजोर हो गई हूँ। मैंने कहा दिल में कहती हूँ राज की बात है, राज की बात है।
0: राज की बात है, दूसरों को नहीं बतानी, खुद ही सेहतमंद होते ना, खुद ही प्यारे होते
2: ना। जो बेहतर समझते उसे बता दो, जो नहीं समझते उसे नहीं बता दो।
0: चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थी जनाब। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है और इनको हम मौका दे रहे हैं इस वक्त जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी जनाब, कौन? मैं बिल्कुल जी ठीक ठाक हूँ। मास्टर साहब आ चुके हैं हमारे साथ।
3: जी जी जी,
0: कैसे कैसे हैं मोहतरम? ठीक हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
0: आज आपको हमने एक और फिर सेहत के हवाले से एक प्रोडक्ट बता दिया है कि भाई हम तो केसन तो आप लोगों का इतना सोचती है कि आपके जितने भी बड़े बड़े मसले हैं ना बीमारियों के, उनके हल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा वाले प्रोडक्ट है हमारे पास
3: जी। कौन सी?
0: ये हाजमा कंट्रोल

0: इडली एक
1: ठीक है,
0: और दूसरा सफेद दाल 6.5।
1: 6.5 तो 1,000 तो आपका हो गया ना।
0: 1,050।
1: तो फिर उसके ऊपर तो गिफ्ट आपका बनता था, एक परफ्यूम और एक साबुन बनता था, उसने आपने उनसे क्यों नहीं लिया
0: जी?
1: ये हमने 1,000 रुपए के ऊपर गिफ्ट रखा हुआ है ना, 1,000 रुपए की चीजें खरीदेंगे तो 2 गिफ्ट मिलेंगे आपको वहाँ से, तो आप वहाँ पर जाएं और उनसे लें कि भाई मैंने जो 1,000 की चीजें आपसे ली हैं, हमने
0: मैंने जो दोस्त को भी मैं खुद नहीं देता हूँ, मेरा दोस्त पीछे रहता है।
1: अच्छा जी,
0: दिया था तो ये पैसे तो पहले 1,000 मैंने कल दिए थे,
1: ठीक है,
0: एक शादी को एक शादी उसके पास दिया था 1,000 पहले, एक पक्की और एक छुपेदर। आज की वो मेरी बहन ने कहा कि मेरे लिए वो पक्की ले आए,
1: ठीक है,
0: तो मैंने 2 पक्की और एक छुपेदर, तो 1,000 तो कल दिए थे और 1,350 रुपए आज भी है उनसे,
1: ठीक है,
0: दूसरी पक्की के। जी,
1: तो ये तो फिर उसने
0: तो
1: आपके
0: 1,350
1: तो आप उस भाई को भेजिए वहाँ पर, आपके 2 गिफ्ट, एक परफ्यूम आपको मिलेगा, ठीक है, और एक साबुन फ्री मिलेगा 1,000 के ऊपर। ये टांग वालों के लिए हमने ऑफर रखी हुई कि 1,000 की चीजें खरीदेंगे तो 2 फ्री मिलेंगी आपको।
0: क्या लेंगे जी?
1: मैंने कहा 1,000 रुपए के ऊपर 2 चीजें फ्री हैं, एक परफ्यूम और एक साबुन।
0: चलो ठीक है, फिर आऊंगा, वो मेरा दोस्त है, वो जो
1: बस ठीक है, हाँ जरूर, बस उनसे आप ये आपके लिए हमने ऑफर बनाई हुई है तो जरूर जरूर, और इस्तेमाल शुरू कर दिया माशाल्लाह आपने ना।
0: अभी तक मुझे मिला नहीं, अभी उसे फोन किया था, अभी मैं घर में हूँ, वो 2-3 बजे आया है टांग से, उसका घर मेरे पूछी दूर है मेरे दोस्त का सारे का,
1: पकी को पानी के साथ इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट, खाली पेट नाश्ते से पहले,
0: अच्छा
1: नाश्ते से बिल्कुल पहले खाली पेट, जैसे कि सुबह की नमाज पढ़े ना फजर की नमाज, तो उसके बाद ले लें, उसके बाद आप पानी के साथ 1 चम्मच ले लें आप, ठीक है। और दूसरी जो है ना, आपको रात को खाने के आधे घंटे बाद, जैसे रात का खाना खा लें तो उसके बाद जो आधे घंटे के बाद 1 चम्मच और ले लें, दोनों पानी के साथ,
0: ईशा
1: की नमाज यूँ समझ लें, 1 फजर की नमाज के बाद और एक ईशा की नमाज के बाद, ये तरीके पानी के साथ आपने लेना है, ठीक है जनाब?
0: ठीक है,
1: ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी मास्टर।

जी जनाब, मुझे इस वक्त तीनों स्टेशन से एक साथ सुन रहे हैं, पहाड़पुर में भी मौजूद है, नौमी मजबूर हमारे साथ मौजूद है, और नौमी मजबूर क्या कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं जनाब, और तला किंग भी मौजूद है क्या जी, सलाम कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत मजा आ रहा है, ठीक है जनाब, और बहुत नौमी मजबूर कहते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी, और पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। अच्छा जी, कौन सी यादें यार जी।

जी जनाब, केसन की वेट कम पेट कम हर्बल फक्की जनाब आपको स्मार्ट बना सकती है। और हम मैसेज पढ़ रहे थे किसका, बल्कि मैं इस वक्त थोड़ा सा फ्लाइट मूड लगा लेता हूँ, मैं इनके मैसेजेस जल्दी से पढ़ लूँ, टाइम हमारे पास कम होता है जनाब। और दुरे अदन, मेरा दिल करता है मैं एक परफ्यूम बनाऊं जिसका नाम हो दुरे अदन। ठीक है जनाब, हमारे ऑलरेडी दो परफ्यूम मौजूद हैं, अकबर एंड जहरा, दो परफ्यूम मौजूद हैं। जहरा के नाम से एक परफ्यूम हमारा मौजूद है, नाम की तरह खुशबू बहुत प्यारी है खवातीन के लिए स्पेशली। ठीक है जनाब, छोटा परफ्यूम इसका 250 रुपए का है, बड़ा 1600 रुपए का है। ठीक है जनाब, उसके साथ अकबर है, अकबर भी छोटा 250 रुपए का है, बड़ा 1600 रुपए का है। एक और अब हम परफ्यूम लॉन्च करने जा रहे हैं जनाब, रुखे जानान। ठीक है जनाब, और वो हम देखते हैं कि वो बड़ा लॉन्च करते हैं या छोटा। और दुरे अदन मेरा दिल बहुत करता है, ये नाम मुझे बहुत प्यारा है, जन्नत के दरवाजे का नाम। तो हो सकता है दुरे अदन भी हमारा परफ्यूम आ जाए। ठीक है जनाब, जिस फील्ड में हम कदम रखते हैं फिर उसको डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं। तो अरूबा वफा फातिमा यानी कि दुरे अदन कहती हैं, द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, माशाल्लाह शो इज वेरी बेस्ट एंड प्लीज उस्ताद जी अपनी जगह किसी को मत दिया करें, हजारों आवाजें भी सुनाई दें ना, आपकी आवाज की और अल्फाज की मिठास किसी के अंदाज बयान में नहीं हो सकती। यू नो आई लव फॉर योर वॉइस। ठीक है जनाब, कहते हैं कि मैं आपकी तर्जमा यही है कि मैं आपकी आवाज से बहुत प्यार करती हूँ।

0: वो हमने आरजे को निसार भाई बहुत काबिल एहतराम है, और पश्तो लैंग्वेज की वजह से जो है, चूंकि ये प्रोग्राम यहाँ से टांग को जा रहा होता है तो पश्तो जरूरी है। अच्छा जी, अब्दुल हादी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अन तेरी जात अजीम है रब सोना, तेरा जिक्र करेंदा खुश थीना, तेरी जात तारीफ दे काबिल है, तेरी हमद लिखेना खुश थीना, तेरे हुक्म ते जिन जान कुर्बान करा, मदनी ते दरूद भेजे ना खुश थी ना, उन्हीं शाकिर बनी हुई हर शय ते सुभान अल्लाह आखदा ते खुश थी ना।
1: मकसद बस
0: क्या बात है जा, बहुत जबरदस्त। सिरम शहजादी पहाड़पुर से हमें सुन रहे हैं भाई। मैं शैम्पू, अच्छा जी, आयल और ग्लूटावाइट क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि जो केसन के ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, प्लीज बता दें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़पुर के अंदर हमारी गहरी नजर है हर दुकान के ऊपर, और गहरी नजर है हमारी के हर चीज को हम चेक कर रहे होते हैं भाई कि कहीं पर कोई दो नंबर चीज ना आए। तो इंशाल्लाह हमारी हमारी टीम की भरपूर कोशिश होती है कि हम चेक एंड बैलेंस रखें, और कोई भी दो नंबर ही अगर कहीं पकड़ी जाती है तो उसे रिमूव करा दें एरिया से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेफिक्र होके जहां से भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे केसन के, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही होंगे इंशाल्लाह। सलाम भाई, कैसे हो भाई? आपकी आवाज मुझे आपकी आवाज अच्छा जी, आवाज बड़ी प्यारी, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। वैसे आपके शो भी मस्त हैं, मैंने आपकी क्रीम लगाई थी। अच्छा जी, लगाएं तो भी इस्तेमाल करती है ना, इंशाल्लाह आपको डिजायर रिजल्ट भी मिल जाएंगे। सब सुनने वालों को मेरा सलाम। एंड ये है रोनी खानू खेल से, रोनी हमें सुन रही है, ठीक है जनाब। रोनी रोनी रोनी को वेलकम करते हैं, ये पहाड़पुर से हमें सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर खलील सावान साहब, सलाम टू ऑल लिसनर्स, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और केसन की क्या शान है माशाल्लाह, खुदा पाक मजीद तरक्की आता फरमाए। नियाज हुसैन शाह शबीर अहमद शबरा भाई को स्पेशल सलाम, और नजर हसन फ्रॉम कच्ची काठगढ़। प्लीज इश्क दा बंदा
1: फकीर तेरे दर पे
0: देख जी, देख लें, आपके दिल की बात सुन ली मैंने।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं 0313 91 27 273।

अब मैं थोड़ा सा उर्दू में बात कर लूँ ताकि मेरी सराय की बहन भाई जो हैं वो फिर नाराज ना हो, क्योंकि वो अक्सर नाराज हो जाते हैं कॉलर से भी, कॉल भी इस वजह से जब करते हैं तो अक्सर वो प्रोग्राम के बाद कॉल करते हैं। तो एक बात याद रखें, ये शो जो है जो मैं कर रहा हूँ ये तमाम के लिए है और आप सब के लिए है ये प्रोग्राम। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से मैं अर्ज करता चलूं, मैं पश्तू उर्दू और सरायकी दोनों जानता हूं, दोनों में बात कर सकता हूं, और जब दोनों में बात कर सकता हूं तो फिर आप क्यों होते हैं परेशान? अरे ना हो ना परेशान जी, अगर आप हो जाते हैं परेशान तो फिर याद रखें परेशानी का कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल, परेशानी का कोई भी हल नहीं है, परेशानी का वाहिद हल यही है कि आप अपने मसाइल को हल करें। मसाइल कैसे हल करेंगे? इस्तेमाल करें परमानेंट कॉस्मेटिक्स को। परमानेंट अगर बालों का मसला है तो फिर आप इस्तेमाल करें परमानेंट। ओहो, अच्छा अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है कि जब मैं मोबाइल रखता हूँ और मैसेजेस को बैक करता हूँ तो फिर कोई ना कोई भाई कॉल कर देता है और मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। वो भी सोच रहा होता है कि यार ये क्या अजीब बंदा है, क्या अजीब सड़ाएदा, हाय क्या अजीब सड़ाएदा, नंबर खुश अभी कॉल ना अटेंड कभी। तो बिल्कुल तासु कॉल कबूले सो 0304-99-25-388 0304-99-25-388 वही है उसड़ाए लिवने शुवाए दिदनु न रान ख्वाड़ी पर शरारा पस शुवाए तेर वक्तु न रान ख्वाड़ी او کل یو تا کل بلتا سوال زاری کبی منت کری نالی کی مدام سوالو نا دیدنو نا ران خواڑی نو داسی خلق دیدنو نا خواڑی نو بالکل دیدنو دی پارا پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کو لونگینا ما پلال نزاکتونا

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το ούγε γιατί σε πάρσι δεν τόσα έχω χαστηρί.
1: Για να τι σε τα ρεχανά από σε πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα είμαι ζητή μόχο κορτά national ο μαλτι national καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλε βε χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη ο στούλ κούρβαλα να φασούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या जे पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर निस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دام رکشولای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملاویشی
1: تار کنا داو تو داپا بانی گل شه اندرون لکی گیرد جان زبه گاله پر شوی مارکی شه دیشما مین دیستیبیوٹر حافظ زیر سیب سارو درتا ملاویشی جاستا

मत होना। जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का